यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम प्रिंबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि। तदनुसार

6:05 पर कार्यक्रम सुप्रभात के साथ नुपुर आपके साथ होंगे। 7 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 7:05 पर लेकर हाजिर होंगे रविंद्र सिंह, और 8 बजे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ होंगी नुपुर।

सुबह 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने रविंद्र सिंह के साथ। 10 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का।

सुबह 10:05 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ रहेंगी निहारिका। 11 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का। प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स सुबह 11:05 पर आपके साथ रहेंगे रंजन।

0: बढ़ा दिए से।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: FM Dragoban
4: 103 MHz.
3: News, music and entertainment.
4: This is FM Dragoban.
3: FM 103 MHz.
5: Hello, welcome back once again, dear listeners, and a very, very good morning to everyone tuning in. This is your program, Good Morning Nagaland, and this is being brought to you by FM Dragoban at 103 MHz. And it is time to start the show off with your song, one of your favorite songs, I would say. This is Madness by Muse. Enjoy.

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीपफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के

0: तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
0: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
4: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
0: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
5: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryo said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
0: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
6: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions

लव के लिए कुछ भी करेगा फेम मत अपना लोके उदित नारायण और सुनिधि चौहान लगा वास्ते हुनिले हुनि रंग सब बिल्लाक प्रोग्राम भी सेस करो बोले लास्ट समय फिले पुंची जैसे मुई जल्दी कुरीगेना दूसरा गीत बजाई दिया से और प्रोग्राम ए पार दूसरा गीत दिया से टैक्सी नंबर 902 11 फिल्म की गीत गए से शेखर रावजियानी

0: The route from High School Junction to Census Point, in the northbound it is moderate and light for southbound. The alternate route for this will be Billy Graham Road to DBS. And finally, the route from NHAK Junction to Census Point, the status of traffic is light for both north and southbound. So there you have it, dear listeners. That was the real-time traffic update. Coming up next is your program, Woman Time. Stay tuned.
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: WFM Dragoban
4: 103 MHz.
3: News, music and entertainment.
4: This is FM Dragoban.
3: FM 103 MHz.

listeners, आशा आसे आजि लगा खास बातचीत हुने गेना सब अपर लाभ हुसे गई गेना विश्वास करी आसे माइकी मान्य आवाज प्रोग्राम यदे बड़ा सेस करी आसे थैंक यू।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यह प्रतिबंध

ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार, मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के रिहैबिलिटेशन विंग प्रशांति की डायरेक्टर संध्या गुप्ता सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम कैंसर के नाम से घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 40% कैंसर को हम अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर दूर रख सकते हैं। ज़रूरत है बस थोड़ी जानकारी की, जागरूकता की और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाने की। तो आपको यह समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के परिवर्तनीय जोखिम कारक के बारे में। ये वे कारक हैं जिन्हें रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से बदला जा सकता है, और ये छोटे छोटे बदलाव हमें इस बीमारी से बचा भी सकते हैं। तो आइए सुनिए ये बदले जाने वाले जोखिम क्या हैं। सबसे पहला कारण है तंबाकू का सेवन एवं धूम्रपान। इसके अलावा शराब के सेवन से उच्च बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI यानी अधिक वजन होने से, शारीरिक गतिविधि की कमी, पौष्टिक आहार की कमी यानी फल और सब्जियों के कम सेवन से तथा अत्यधिक सूर्य के संपर्क में आने से होती है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण या पोल्यूशन भी फेफड़ों के कैंसर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV और हेपेटाइटिस, जो कम आय वाले देशों में लगभग 30% कैंसर के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम कैंसर से ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब जानिए ये रिस्क फैक्टर्स हमें कैसे प्रभावित करते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। इसमें सबसे अहम है तंबाकू का उपयोग और

धूम्रपान। कैंसर से होने वाली लगभग एक चौथाई मौतें तंबाकू के उपयोग और धूम्रपान करने से होती हैं। धूम्रपान कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इससे आप अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही अपने घर वालों को और आसपास वालों को भी खतरे में डाल रहे हैं। दूसरे लोगों के तंबाकू के धुएं में सांस लेना यानी पैसिव स्मोकिंग भी आपके कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। अपने घर को धूम्रपान मुक्त रखना आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तंबाकू विश्व स्तर पर कैंसर का एक प्रमुख रोके जा सकने वाला कारण है, जिसमें 70 ज्ञात कैंसर कारक पदार्थों सहित 7,000 से अधिक रसायन होते हैं। तंबाकू चबाना या चूसना सिगरेट पीने का सुरक्षित विकल्प नहीं है। यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको मुंह और मौखिक कैंसर का खतरा अधिक हो जाता है। साथ ही यह भी जान लें कि ई सिगरेट भी उतनी ही हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें भी निकोटीन, जहरीले यौगिक तथा कैंसर पैदा करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। यह फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण बन जाता है और मुंह, गले, अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस, मूत्राशय तथा पैनक्रियास के कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। सिगरेट छोड़ने से लंबे समय तक गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का खतरा तेजी से कम होने लगता है। अगर आप सिगरेट या तंबाकू के सेवन को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। यदि आप धूम्रपान अपने आप छोड़ने में नाकाम हैं तो आपको डॉक्टर से मदद मांगनी चाहिए। तंबाकू और धूम्रपान छोड़ देने से आप अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए और स्मोकिंग से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई उम्र या समय की सीमा नहीं होती। अब दूसरे कारक के बारे में बात करते हैं, वो है अतिरिक्त शारीरिक वजन और आहार। मोटापा कम से कम 13 प्रकार के कैंसरों के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा हुआ है, जिनमें स्तन, कोलोरेक्टल और पैनक्रियाटिक कैंसर शामिल हैं। प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट भी कैंसर का कारण बनने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। फलों और सब्जियों की कम मात्रा वाले आहार कैंसर के जोखिम को और बढ़ा देते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखने से कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जैसे हृदय रोग और मधुमेह का जोखिम भी कम होता है। आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी। ऐसे स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार लें जिसमें फल और सब्जियाँ भरपूर हों और विभिन्न रंगों की भी हों, और साथ ही वसा यानी फैट तथा चीनी की मात्रा कम हो। अपनी मेटाबॉलिज्म के स्तर के अनुसार केवल उतना ही भोजन करें जितनी आपको आवश्यकता है। नियमित व्यायाम करने से हार्मोन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। यह शरीर में होने वाली सूजन को भी कम करता है और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि व व्यायाम कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करती है। अब तीसरा कारक है शराब का सेवन। शराब पीने से मुंह और गले के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह ग्रास नली यानी ईसोफेगस, आंत, लिवर और स्तन के कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। आमतौर पर जितना अधिक आप पीते हैं उतना ही अधिक आपका जोखिम बढ़ता है। यदि आप इनके साथ धूम्रपान भी करते हैं तो आपका जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आप जितनी शराब पीते हैं उसे सीमित करें, या फिर बिल्कुल ना लें या कम मात्रा में लें। अगला कारक है अत्यधिक धूप में रहना। बाहर कुछ समय बिताना आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है। हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी त्वचा को बहुत अधिक धूप से भी बचाना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत अधिक धूप त्वचा के कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है, इसलिए धूप में सावधानी रखें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल और पूरी आस्तीन के कपड़े

पहनने आपको सूरज की तेज किरणों से बचाने में मददगार होता है। जब भी संभव हो, घर या कार्यालय के अंदर या फिर छाया में रहें। अगला कारक है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था, प्रदूषण भी लंग कैंसर का एक कारण हो सकता है। इससे बचने के लिए जब प्रदूषण अधिक हो तो बाहर कम निकलना चाहिए, और यदि निकलें तो मास्क के उपयोग से कुछ बचाव हो सकता है। घर में आप एयर प्यूरिफायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। लकड़ी या कोयला ईंधन के रूप में जलाने से भी धुआं होता है व प्रदूषण बढ़ता है। अगरबत्ती व धूप का धुआं भी नुकसान देता है। घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए जिससे अंदर का धुआं बाहर निकल सके और घर में पॉल्यूशन कम हो जाए। अगला कारक है संक्रमण और वायरस। कुछ संक्रमण यानी इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं, जिन्हें रोका, उपचारित या प्रबंधित किया जा सकता है। इनमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV तथा हेपेटाइटिस शामिल हैं। सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामलों को HPV टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। अब तो हमारी सरकार ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए यह टीका मुफ्त कर दिया है, इसलिए यदि आपके घर में बेटियां हैं तो उनका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए, जिससे उनका सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके। तो आइए हम तंबाकू और शराब से दूर रहने, स्वस्थ भोजन करने तथा अपनी बेटियों का टीकाकरण करवाने का संकल्प लें। हमारे छोटे छोटे बदलाव हमें और हमारे परिवार को एक बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप कैंसर से दूर रह सकते हैं और अपने संपर्क में आने वाले परिवारजनों और मित्रों को भी इन बातों से अवश्य अवगत कराएं। इसके अलावा अपने शरीर के प्रति सतर्क रहना चाहिए, और यदि कोई लंबे समय तक परिवर्तन महसूस हो तो समय पर जांच कराना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे यदि कोई बीमारी हो तो उसे शुरुआत में ही पहचाना जा सके और उसका उपचार किया जा सके। जैसा कि कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम समय रहते ही अपना ध्यान रखें तो बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। हमारा एक डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड बंगाली मार्केट के पास स्थित है, जो सुबह 9 से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार खुला रहता है। यहाँ बहुत कम पैसों में कोई भी अपनी जांच करवाने जा सकता है। हमारी एक मोबाइल वैन है जिसकी मदद से हम निःशुल्क चेकअप कैंप लगाते हैं। हमारे डिटेक्शन सेंटर का नंबर है 011-237-169-41। मैं फिर से दोहराती हूँ, 011-237-169-41। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम है राइज अगेंस्ट कैंसर। इसे आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको 5 अलग अलग भाषाओं में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जानकारी देते हैं, और साथ ही कैंसर से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। हमारा एक पुनर्वास केंद्र है प्रशांति, जो CR पार्क में स्थित है, जो यहाँ कैंसर रोगी जो ठीक हो जाते हैं, हम उन्हें यहाँ पुनर्वास प्रदान करते हैं और उन्हें जीवन में आत्मविश्वास दिलाते हैं ताकि वे पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। यहाँ हम कुछ वर्कशॉप्स भी आयोजित करते हैं जिनमें कैंसर तथा अन्य विषयों की जानकारी दी जाती है। यहाँ हम स्तन कैंसर के रोगियों को निःशुल्क ब्रा और प्रोस्थेसिस प्रदान करते हैं। उनके हाथ की सूजन के लिए कंप्रेशन थेरेपी भी दी जाती है, साथ ही उन्हें इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग भी दी जाती है। यदि आपको कैंसर से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर नोट करें, 9910-516-562। मैं फिर से दोहराती हूँ, 9910-516-562। आशा करती हूँ कि आज की इस वार्ता को सुनकर आप भी अपने जीवन में स्वस्थ रहने

0: के लिए कुछ बदलाव लाएंगे। आज की इस वार्ता के प्रायोजक हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी, और हमें सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आकाशवाणी।
1: शुक्र है, आज है शुक्रवार और समय है दोपहर का और बज गए हैं 1:19:45। आप हो गए होंगे तैयार क्योंकि कार्यक्रम शुरू होता है मेरा वाला सॉन्ग। 9868-1070-70 पर आप कीजिए व्हाट्सएप। अपनी पसंद के खाना, अपनी पसंद का गाना, अपनी पसंद के नजारे, क्योंकि एक शायर ने खूब कहा है कि हम इंसान तो हैं लेकिन लगते हैं कुछ ना कुछ गुब्बारे, अलग अलग रंग के गुब्बारे।

तो भिन्न भिन्न रंग के ऑफ डिफरेंट कलर्स गुब्बारे यानी बलून्स, वैसे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं ना जिनमें खूब जैसे कहते हैं ना, इनके कदम तो जमीन पर पड़ते ही नहीं है तो उड़ते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायूस से रहते हैं। कुछ ऐसा ही इस गाने के प्रति विचार रहे जब जिसे लिखा गया होगा। भानु प्रकाश हमारे साथ मैसेज के द्वारा जुड़ गए हैं। उन्होंने बहुत 3-4 रिक्वेस्ट भेजी थी, उसमें से एक मुझे मिल गई है। रब ने बना दी जोड़ी से आपकी पसंद फिल्म का जो गाना आपने पसंद किया है वो मैं थोड़ी देर में प्ले करने जा रहा हूँ। और उत्तम नगर दिल्ली से मैं 3-4 नाम आप एक मैसेज में लिख देते हैं, बड़ी नाइंसाफी है ये। खैर मैं पढ़ देता हूँ। कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल एंड भानु प्रकाश, एक मैसेज 4 नाम, बड़ा भारी है ये काम, बट ठीक है, इट्स ओके। और भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया। एक मैसेज हमारे पास जो आया है वो कहते हैं कि आप कोई भी पंजाबी गाना सुना दीजिएगा और जो आपको पसंद हो पाजी। थैंक यू पाजी। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से लिखते हैं, तो थोड़ी देर में हो सकता है इन दिस प्रोग्राम, प्रदीप जी एंड संगीता जी, मैं हो सकता है आपके लिए एक पंजाबी नंबर मैं थोड़े वास्ते प्ले कर देंगा जी। थोड़ी थोड़ी नज़र इनायत इस तरह ही रहनी चाहिए। और हमारे से जो बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। हमारे कंप्यूटर जी अगर उसमें हमारा साथ पूरी तरह से देंगे, क्योंकि देखिए कई दफ़ा क्या होता है, जो मूवी आप मांग रहे हैं वो तो होती है, लेकिन जो सॉन्ग आप मांग रहे हैं वो कई बार नहीं होता है। बट यू कैन ऑलवेज सेंड मी 1 or 2 choices। 9868107070 पर आप कीजिएगा व्हाट्सएप हमें। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं आपके साथ रंजन।

रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान अनुष्का शर्मा मोर मूवी सिर्फ एक मूछ से नहीं पहचान पाई कि वो जिनके साथ रहती हैं जो उनके बेटर हाफ हैं वही उन्हें डांस क्लास में मिलते हैं ऐसी कुछ कहानी थी थोड़ी अटपटी लगी लेकिन हाँ ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए मूवी देखते समय क्रिएटिव लिबर्टी देनी चाहिए जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इतना पैसा लगाते हैं दिमाग लगाते हैं समय लगाते हैं उसके बाद हम जाके कह देंगे ले कर लो गाल मजा ही नहीं आया। खैर हमारे पास मैसेज आया है मेलबर्न से लिखती हैं कहाँ चला गया आपका मैसेज मेलबर्न से बड़ी दूर से आप इस समय सुन रहे हैं वहाँ तो टाइम डिफरेंस भी आई थिंक 5-5.5 घंटे आगे चल रहे हैं आप यहाँ से तो शाम का वक्त होगा वहाँ पे लगभग और वो गाना आपने जो रिक्वेस्ट किया है स्त्री फिल्म से वो एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक बार फिर से आप कोशिश कीजिए जो गाना आप कह रही हैं ना जोया जोया मेलबर्न से वो आपने जो लिखा ना आज की रात उसके बाद क्लैरिटी नहीं है मुझे पास और भी जो गीत है ना उनके बोल इससे नहीं स्टार्ट होते हैं ये कई बार क्या होता है हम मैं चलिए इस तरह से बता देता हूँ हम कोई गाना सुनते हैं हमें मुखड़ा याद नहीं होता हमें सिर्फ अपना दुखड़ा याद होता है हमें पहली लाइन गाने की नहीं याद होती भीतर कहीं से हम एक लाइन उठाते हैं और कहते हैं जी ये सुना दीजिए तो मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है मतलब मैं पहले वो गाना अपने मन में गुनगुनाता हूँ कि यार इसमें वो लाइन कहाँ थी आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि हम आप तक पहुँचते हैं लाइव आकाशवाणी रेनबो से और जो म्यूज़िक होता है वो कई दफ़ा कंप्यूटर की मेहरबानी पे भी होता है जैसे सुनीता शर्मा जी ने हमारे पास एक मैसेज भेजा है पहला पहला प्यार है फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन शालीमार बाग से आपने ये रिक्वेस्ट किया है आपने मांगा है ये गाना तो हम मना कैसे कर सकते हैं तो ये हुआ ना क्लियर जैसे आपने मांगा गाना कि भाई पहला पहला प्यार है और यही टाइटल है सॉन्ग का सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू स्पॉट और कंप्यूटर जी ने आपके लिए प्ले कर दिया है आप भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग मैं हूं आपके साथ रंजन ये वो प्रोग्राम है जहां पर आप अपनी पसंद के गाने ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड ऑर्डर कर सकते हैं गर्मा गर्म जैसे बारिश के मौसम में गर्म जलेबी समोसे और चाय वैसी ही अपनी पसंद का हुजूर एक गाना संग हो जाए।

0: बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। राजकुमार गुप्ता मेरठ से लिखते हैं, ओ हंसनी गीत सुना दीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। जहरीला इंसान मूवी में ये शो कर रहा है, आपने मूवी का नाम नहीं लिखा। अगर कोई और हंसनी फिल्म से है तो बताइएगा, वरना मैं ये गाना आपका क्यों करके मैंने रखा हुआ है। हे दुखभंजन नाम है रंजन सर, नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो ये दो पंक्तियां लिखी हैं ये काम कर गई हैं। कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालविया, मनीषा मालविया, फिल्म हम सब चोर हैं गाना। सावरी सलोनी तेरी झील से आगे, आई ट्राई, मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा, हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट भी बजाऊं। तो थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौटेंगे तो फिर आपकी पसंद का गाना जरूर बजाएंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
8: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वेलकम बैक है जी आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग और आपके सॉन्ग्स. हम यहाँ बाकायदा ब्रेक बजाते हुए भी ढूंढ रहे थे और हमारे पास जो नेक्स्ट गाना हमने क्यू किया है वो है साबरी सलोनी तेरी झील सी आंखें, कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मनीषा एंड हाँ बस ये दो ही नाम है, इन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया है तो ये आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं. ऐसे ही तवे से उतारे गर्मा गर्म गाने या फिर मिल्क शेक समान ठंडे गाने, मैंगो शेक, लस्सी, छाछ. जो भी आपको पसंद हो खाने में, खाने के संग और खाने के संग गाने, मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर.

कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर प्यारी बहुत ही बढ़िया अदाकारी वाली आवाज, खो गया है मेरा दिल। तो ये रिक्वेस्ट तो हो गई जी, अब आगे बढ़ते हैं। साहिल हमारे पास रिक्वेस्ट लिख के भेजे हैं, साहिल भाटिया ने मेरठ से, और वो कहते हैं कि चांदनी फिल्म का हमें गीत सुना दीजिए, लगी आज सावन की ऐसी घड़ी है, छड़ी है रादर। देखिए दिल्ली में कल हल्की सी बरसात हुई, कुछ एक बूंदे गिरी, आंधी और हवा चली है, मौसम हल्का सा तो ठंडा हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून भी पहुंचेगा नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में भी, तभी ये गाने और ज्यादा अच्छे लगेंगे मौसम के साथ। लेकिन कोई गाना सुनने के लिए कोई वजह जरूरी है या नहीं है, ये कौन कहेगा, ये कौन तय करेगा। इसीलिए तो हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों के करीब है, जिसे कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग।

0: सुरेश वाडकर जी की आवाज में, सुरेश वाडकर जी की आवाज में आप सुन रहे हैं लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और बस हमारी जो घड़ी है वो भी साथ साथ टिक टिक कर रही है और कह रही है कि भाई ब्रेक भी ले लो, कितना बोलोगे, कितने गाने बजाओगे, सबको अगर खुशी करते रहोगे तो एडवर्टीजमेंट कब सुनाओगे? क्योंकि उसके पीछे भी एक वजह है, मैं बताता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। देखिए जैसे जैसे इंसान का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, इकोनॉमिक्स का विकास हुआ, वहाँ पैसे का लेन देन शुरू हुआ, पैसे के लेन देन से ही एडवर्टीजमेंट्स आती हैं और वो हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत छोटी सी ब्रेक ली, यूं गया और यूं आया।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरे वाला सॉन्ग। और हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट है रंजीत मस्ताना की रायबरेली से। लिखते हैं कि द डर्टी पिक्चर से इन्हें गाना सुनना है इश्क सूफियाना। तो आपकी पसंद का आगे चल रहा है गाना।

रंजीत मस्ताना, ताना नाना नाना। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट 9868107070 पर। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल लिखिए अपने नाम और भेज दीजिए आकाशवाणी रेनबो पर।

स्टूडियो में टाइम हो गया 1:51 और देखिए आपकी घड़ियों में भी वही टाइम होगा, क्योंकि आजकल देखिए बड़ा बेमानी है ये बताना कि हमारे स्टूडियो घड़ी से घड़ी मिला लीजिए, क्योंकि मोस्टली सबके पास सेल फोन्स हैं और उसके ऑटोमेटिकली टाइम जो होता है वो अधिकतर एक समान ही होता है। अगर आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जो टाइम दिखा रहा है तो वो ये बता रहा है कि भाई अभी कुछ और गाने जरूर बज सकते हैं। एक रिक्वेस्ट पीछे कही थी कि भाई पंजाबी गाना सुना देना, तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई करता है गाना हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आप लिख रहे हैं कल प्ले कर दीजिएगा, तो कल तो मैं नहीं रहूंगा साथ में, तो

जी अब ये नहीं कह सकते हमने आपके लिए टाइम स्पेयर नहीं किया, और ये हमने गीत बजाया है सलूजा साहब के लिए और उनकी वाइफ के लिए। उनका मैसेज कहीं गायब हो गया, बड़ी देर हो गई मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी, और जो नेक्स्ट हमारे पास गाना हमने क्यू किया है वो है विश्वात्मा मूवी से, और हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट भेजी है सोलापुर महाराष्ट्र से, होतगी गाँव से, श्री कृष्ण भंसोड़े ने, प्रवीण शिवम और श्रवण श्रव्या ने। तो अब आपकी पसंद का गाना आगे आ गया है विश्वात्मा। एक समय पहले, मतलब एक अरसा हो गया जब ये मूवी आई थी, गाने इसके बड़े पैपी थे, सुनने लायक थे। आपकी पसंद है जी, बजा रहे हैं मेरे वाला सॉन्ग में।

प्रमिला का कर्नाटका से हमारे पास मैसेज आया है, कुछ एक दो नाम हम यहाँ और ले लेते हैं क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है कि हम बहुत सारे गाने आगे नहीं बजा पाएंगे। आई थिंक दिस वुड बी द सेकंड लास्ट और मे बी द लास्ट सॉन्ग। जिला मुरादाबाद से ग्राम दुल्हापुर से हमारे पास एक मैसेज आया है, सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलबीर सिंह मुकेश कश्यप शीतल कश्यप। अरे एक सांस में 100 नाम ले सकता हूँ मैं, मुझे ट्राई कर रहे हो।

जी हाँ, आ गई तो मुझे कहना पड़ेगा ज्योतिका सिंह के लिए, जो अगला कार्यक्रम पेश करने के लिए स्टूडियो में पहुंच गई हैं। रहेगा आशियाना, रेनबो डेस्टिनेशन, तो फिर घूमने फिरने की और देखने लायक जगहों के बारे में आपसे बात करेंगे ज्योतिका। फिलहाल रंजन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी इन्हीं एयरवेव्स पर। ठीक है, बाय बाय।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती हैं, है ना, महसूस की जाती हैं। कुछ सफर सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं होते हैं, यादों में तय किए जाते हैं। आज हम रेडियो के जरिए निकल रहे हैं एक ऐसे ही ब्यूटीफुल जर्नी पर, एक ऐसी जगह जहां सुबह की शुरुआत पहाड़ों पर चमकती धूप से होती है, जहां झीलों पर आसमान उतर आता है और जहां की हवा में एक अलग ही सुकून बसा हुआ है। आज का रेनबो डेस्टिनेशन है कश्मीर। जून का महीना चल रहा है, देश के कई शहरों में गर्मी अपने पूरे जोरों पर है, लेकिन कश्मीर इस वक्त अपनी सबसे खूबसूरत रंगत में नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ पलों के लिए अपनी रोजमर्रा की दौड़ से थोड़ा वक्त निकालिए और मेरे साथ चलिए कश्मीर की वादियों में।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और आज हम कश्मीर की तरफ सफर कर रहे हैं। जी हाँ, इतनी खूबसूरत जगह है ये, इतनी खूबसूरत कि क्या कहना है ना। सबसे पहले आज हम मैं आपसे बात करती हूँ कश्मीर कैसे पहुंचा जाए। श्रीनगर एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु, कोलकाता से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप रेल से सफर करना पसंद करते हैं तो जम्मू तावी रेलवे स्टेशन कश्मीर का सबसे बड़ा रेल गेटवे माना जाता है। जम्मू से श्रीनगर आप लगा लीजिए आप 6 से 8 घंटों तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही प्यारी 6 to 8 आवर्स की जर्नी होगी ये। यकीन मानिए ये सफर भी डेस्टिनेशन जितना ही खूबसूरत होता है। मतलब जून में श्रीनगर का जो टेम्परेचर है ना, आमतौर पर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन सुहाने और शामें हल्की ठंडी रहती हैं यहाँ। इसी वजह से जून को कश्मीर विजिट करने का सबसे पॉपुलर महीना भी माना जाता है। अगर आप पहली बार कश्मीर जा रहे हैं तो आप 5-6 दिन का एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 2 दिन श्रीनगर लगाइएगा, 1 दिन गुलमर्ग, 1 दिन पहलगांव और 1 दिन सोनमर्ग के लिए जरूर रखना। और फिर देखिए ना, कश्मीर का हर वो जो दिन होता है आपको हमेशा के लिए एक नई कहानी, एक नई याद देकर चला जाएगा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
5: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
11: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
10: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
11: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
12: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
13: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। कश्मीर पहुंचते ही जिस जगह से, जी हां, जिस जगह से हम शुरुआत करते हैं वो है श्रीनगर। और श्रीनगर का दिल है कहां? डल लेक में। श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग आप लगा लीजिए 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है डल लेक, ताकि टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सुबह वहां पे जो शिकारा राइड है, पानी में आसमान का जो अक्स हो और दूर नजर आती वो बहुत ही प्यारे से पहाड़, ये नजारा शायद कश्मीर की सबसे पहचानी हुई तस्वीर है। डल लेक को, डल लेक के जो ये फ्लोटिंग गार्डन्स हैं और फ्लोटिंग मार्केट भी काफी मशहूर है। और जब बात श्रीनगर की हो तो मुगल गार्डन्स का जिक्र भी तो होना जरूरी है। आपका निशात बाग हो गया, शालीमार बाग हो गया, या चश्मे शाही हो गया, है ना। जून के महीने में फूलों और फाउंटेन से सजे हुए ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि क्या कहना। देखो मैं आपको एक और रीजन दे रही हूं, बहुत ही स्ट्रांग रीजन, जून का महीना है, बच्चों की छुट्टियां हैं, फटाफट प्लान कर लीजिए अगर आप कश्मीर को थोड़ा और करीब से महसूस करना चाहते हैं। तो आपको पता है क्या करना है? बस एक रात ट्रेडिशनल हाउस बोट में जरूर गुजारना है। ये सिर्फ अकोमोडेशन नहीं, कश्मीर की तहजीब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कश्मीर की तीन सबसे मशहूर डे ट्रिप डेस्टिनेशंस की। यानी कैसे, आप सोचिए मैं किन की बात कर रही हूँ। सबसे पहले ऑफ कोर्स है गुलमर्ग। श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। यहाँ की गोंडोला राइड दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड्स में से एक मानी जाती है। अब चलते हैं कहाँ, पहलगांव की तरफ। श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर बसा हुआ है ये हिल टाउन। आपका लीडर जो नदी है उसके जो पाइन फॉरेस्ट और बेताब वैली के लिए मशहूर है। यहाँ की खामोशी और नेचुरल ब्यूटी दिल को छू लेती है।

और फिर क्या आता है सोचो तो। अजी अपना सोनमार्ग, श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर सोनमार्ग को मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है। जी हाँ, बर्फ से ढकी चोटियां, सिंध रिवर और ग्लेशियर व्यू पॉइंट्स इसे कश्मीर के सबसे फोटोजेनिक डेस्टिनेशंस में शामिल करते हैं। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो इन तीनों जगहों के लिए कम से कम एक एक दिन जरूर रखिएगा, वरना बाद में कहेंगे मैंने बताया नहीं आपको।

देखिए, अब मैं आपसे बात करूंगी उन सब चीजों के बारे में जिनका आपको बहुत ज्यादा शौक है ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। और डेस्टिनेशन आज हमारी है कश्मीर। कहते हैं कि किसी भी जगह को असल में समझना हो, जानना हो, उसके नज़ारों के साथ साथ उसके स्वाद, उसकी तहजीब और उसके लोगों को जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और कश्मीर इस बात का एक खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ की जो सुबह अक्सर एक गरम कप कश्मीरी कहवा के साथ शुरू होती है और कहवा की खुशबू और वादियों की ठंडी हवा दिन को एक अलग ही सुकून के साथ शुरू करती है। खाने की बात करें तो कश्मीर की ट्रेडिशनल वाजवान दुनिया भर में मशहूर है। रोगन जोश, यखनी और दम आलू जैसे व्यंजन यहाँ की रिच कलिनरी हेरिटेज को दर्शाते हैं। और फिर बात आती है शॉपिंग की। जी हाँ लेडीज, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं या सिर्फ आप गर्ल्स जा रहे हैं तो शॉपिंग मिस मत कीजिएगा। पश्मीना शॉल्स, वॉलनट, आपकी जो वॉलनट वुड कार्विंग्स होती हैं, कश्मीरी कारपेट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स यहाँ की खास पहचान है। लेकिन फ्रेंड्स, कश्मीर से सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज जो आप घर लेकर जाते हैं ना, वो कोई सुविनियर नहीं होता है, वो होती है यहाँ की यादें, लोगों की मेहमान नवाजी और वो सुकून जो दिल में काफी देर तक आपके बसा रहता है।

और दोस्तों आज का रेनबो डेस्टिनेशन सफर यहीं समाप्त होता है। कश्मीर की वादियों के बारे में बात करते हुए एक बात जरूर महसूस होती है। क्या महसूस होती है? वो कि कुछ जगहें हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं देती बल्कि हमें थोड़ा सा अपने आप के करीब भी ले आती हैं। और इसी बात के साथ याद दिला दें कि 21 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। सोचिए जरा, सुबह का वक्त हो, पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें बिखर रही हो, वादियों में ठंडी हवा चल रही हो और आप दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ कर रहे हो। आह, सोच के ही मजा आ रहा है ना। योगा और सफर दोनों ही हमें एक बात सिखाते हैं, रुक कर जीवन की जो खूबसूरती को महसूस करना होता है ना, बस वो सबसे इम्पोर्टेंट एहसास होता है। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे रेनबो डेस्टिनेशन सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। इस धुन के उस पार आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। मैं आपसे फिर मिलूंगी 4 बजे अल्फा जन में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश

0: ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभिजीत कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया
0: एकदम बढ़िया। अच्छा, हम भी बहुत छक्कास बोले तो ऑल गुड। ऑलराइट अभिजीत, आप आज के दिन कैसे चल रही है?
1: अच्छे चल रहे।
0: हाँ, गरम ना। तो आप वर्ल्ड कप देख रही है कि नहीं?
1: नहीं, मेरा क्रिकेट सबसे फेवरेट है।
0: क्रिकेट
1: थोड़ा।
0: हाँ, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है?
1: इंडिया का सभी
0: और आप खेलते हैं कि नहीं क्रिकेट?
1: हाँ, मैं पहले खेलता था, अभी तो काम पे जाते ना।
0: और आप क्या खेलते हैं, लाइक बैट्समैन है या बॉलर या क्या? ऑलराउंडर।
1: फील्डिंग इतना अच्छे से नहीं आता है।
0: अच्छा, तो बाकी सब अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, ओके। अभिजीत, आपको बात करने के लिए बहुत, यू नो, इट फील्स सो गुड टॉकिंग टू यू अभिजीत।
1: यस, थैंक यू।
0: एंड अपने मैसेज लिखना पता है ना?
1: हाँ,
0: बेसी थैंक्स दे ना रही ट्यूनिंग को ना मैसेज पता है कि दे
1: आरो काली इमान डिस्टर्ब भी है रेडियो
0: ओ हो ना, तो पानी गिरेगा नहीं था वो, तो कितना पिया हो जाए ना नेटवर्क ना। पानी गिरे तो पाई नहीं मुझे एको को ना पे।
1: थैंक यू। और सॉन्ग का नाम है टाइमलेस है
0: कि क्या लगा ना?
1: टाइमलेस बैंकन।
0: टाइमलेस, ओके। दे मैं एक बार साइड वो टाइमलेस लगा गाना तो नहीं। अपने आर्टिस्ट का नाम ही कोई मुगे ना
1: दा वीकेंड है तो कोई फिल्म है
0: हां तो नहीं लवी अलग पर
1: हैव यू लाइक अस नहीं एलन वॉकर।
0: एलन वॉकर, एलन के बिशु खुशी भाई एलन वॉकर के
1: म्यूजिशियन सब दिन से ये फेवरेट है समय
0: क्यों रे गाना नाम से एलन एलन ना
1: ना ना हेडलाइट आर्टिस्ट लगा से एलन वॉकर अरवालोक।
0: अच्छा, मुलाते एलन वॉकर एलन है ना, टायर्ड है से, डार्क साइड है से, स्पेक्टर है से, सिंग मी टू स्लीप है से, ये दो पास्ता से एक तो बजाई दो इधर बा।
1: हाँ, एक तो बजाई दो।
0: कौन तो बजाई दो? डार्क साइड में
1: इधर बजाई दो।
0: अच्छा, आप डेडिकेशन से अच्छा अपने सत्यन होने से नहीं अपने सत्यन होने से नहीं एफएम
1: ना
0: मैं तो एकला था क्या? ठीक है सर अभिजीत, मैं तो यू नो मैं अपनी रिक्वेस्ट करा ला गाना बजाई वो एलन वॉकर लगा ने। अच्छा, और अभिजीत थैंक्स दे फोन इंग करा ने।
1: थैंक यू,
0: ओके, बाय बाय
1: बाय।
0: All right, listen, that was Abhijit. You know, we received a lot of messages from him. So we just want to say thank you and Dayaji Fong Gurche. It feels good to talk to him too. Anyway, I'll be playing the track called Dark Side by Alan Walker. He wants to dedicate that to all his friends. This is from the album Different World. You are listening to Akash Pane from Trekapan at 103 MHz to our Western Music Show. Dial in a song. It's your phone-in program where you can dial the number 0370224306. Right after this song will be your traffic updates, and later we'll continue with your Western music.

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जी और अनुराधा जी।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ आपने तो फरमाया।
0: अब ये फिल्म 1991 में रिलीज हुआ था।
1: नहीं 1990 क्या है ये,
0: 1990 ना। गाने को लिखा है समीर जी।
1: हाँ हाँ हाँ
0: और आनंद मिलन जी ने सुर से सजाया है।
1: हाँ हाँ म्यूजिक दिया है आनंद मिलन जी ने।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। आशुतोष जी किसको डेडिकेट करना है?
0: पहले तो साथ जी आपको डेडिकेट करना चाहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और त्रिपुरा से मेरा प्यारा छोटा भाई अविनाश तेली।
1: ओके।
0: मेरे धर्म पत्नी संगीता देवनाथ।
1: ओके।
0: और मध्य प्रदेश से भगवान सिंह पारमार।
1: ओके।
0: प्रेम सिंह भाई। रमेश प्रजापति जी।
1: ओके।
0: राम बाबू शर्मा मांगीलाल जी।
1: ओके।
0: और चुन वर्मा जी, राकेश भैया शिमला से, और नेटवर्क सारे श्रोताओं को लेकर सुन रहे हैं।
1: ठीक है ठीक है। ओके आशुतोष जी, मैं एक बात आपसे पूछूं, आप ये प्रोग्राम क्या कौन से माध्यम से सुनता है?
0: ये तो सर जी मैं तो अभी सुन रहा हूँ न्यूज AIR का माध्यम से।
1: अच्छा वो न्यूज ऑन एयर ना
0: जी?
1: अच्छा,
0: हमारा ये रेडियो में आता नहीं।
1: रेडियो में तो नहीं मिलेगा उधर में, क्योंकि बहुत दूर हो गया ना
0: जी, जी।
1: इसलिए मैंने जानकारी लेना है इस बारे में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मतलब कोई कोई तो DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस उससे भी सुन लेता है ना।
0: हाँ।
1: और कोई कोई मोबाइल ऐप से सुनता है, तो आप मोबाइल ऐप से सुन रहे हैं मेरे मतलब ना, है कि नहीं?
0: हाँ जी हाँ।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। तब तो आशुतोष जी
0: अपने जो
1: ओके थैंक यू। ओके वेल लिसनर्स कैन फर्स्ट गाना এটা শুনিব আপোনালোকে যোনটো আশুতোষ তাই ত্ৰিপুৰা পৰা মাঙি কিনা পঠাই আছে। ত্ৰিপুৰা ইজ ইন আগৰতলা, আই মিন আগৰতলা লগা আছে, আগৰতলা ত্ৰিপুৰাতে এটা ষ্টেট আছে আৰু কেপিটেল আছে আগৰতলা। তো মহান এতিয়া এইটো গানা শুনিব মহম্মদ আজিজ আৰু অনুৰাধা পাটোৱাৰ লগা অৱস্থে। ফিল্ম আছে আই মিলন কি ৰাত।

0: हेलो
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते तनुश्री ना?
1: मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ।
0: ओके त्रिपुरा से और भी संगीता देवनाथ केमन आछे?
1: ভালো আছি স্যার, আপনি কেমন আছেন?
0: আমি ভালো।
1: আপনি বাংলা কথা বলছেন, আমার খুব ভালো লাগছে।
0: আচ্ছা আচ্ছা, তো কেসে?
1: আমার প্রথম কলার আমার হাজবেন্ডই ছিল।
0: ও, আপনার হাজবেন্ড নাকি? খুব ভালো, তো খুব ভালো। তো আজকে কি?
1: তো স্যার আজকে আমি শুনবো আনারি ছবি থেকে।
0: ওকে,
1: ফুলো সা চেহারা তেরা।
0: ফুলো সা চেহারা তেরা, আনারি না?
1: হ্যাঁ।
0: ওকে, মই বিসিরে সাব দে। আনারি ফুলো সা চেহারা। अच्छा, ये गाना तो नहीं है अभी, मतलब
1: ये गाना नहीं है तो
0: अनारी, तो अनारी फिल्म तो है, लेकिन ये जो आपने जो गाना मांगा वो टाइटल सॉन्ग तो नहीं है।
1: दूसरा कोई गाना है वो दे दीजिए।
0: बन के पंछी दिल की नजर से किसी की,
1: दिल की नजर से ये वाला दे दीजिए।
0: ठीक है, मुकेश और लता मंगेशकर का आवाज में ना? ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
1: तो दोस्तों को याद कर लो।
0: हाँ, याद कर लो, याद कर लो।
1: सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ, और मेरे हस्बैंड और मध्य प्रदेश से मेरे भैया है भगवान सिंह मंगलाल जी।
0: ओके,
1: और कृष्ण सिंह भैया, सबको लेकर सुनना है सर।
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते। মুকেশ আর লতা মঙ্গেশকর লগা ফিল্ম আছে অনারী।

0: हेलो
1: सर जी, नमस्कार। ये
0: नमस्कार।
1: श्री महाकाल।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार। कौन है आप?
1: सर जी, सेवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: ओके, एमपी मध्य प्रदेश ना?
1: जी जी सर।
0: ओके, शिवा लोहा ना?
1: जी सर।
0: ओके ठीक है ठीक है। शिवा कैसा है आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आपसे बातचीत हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है।
0: ओके शिवाजी, वो आप कौन से माध्यम से सुनता है मुझे जानना
1: सर जी? डीटीएच। डीटीएच
0: आप लोग डीटीएच से सुनता है ना?
1: जी जी सर।
0: ओके।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कौन
1: अब
0: सा
1: आपसे
0: गाना?
1: बात करते हैं सर जी, तो उसको मद्दा करना पड़ता है ना
0: हाँ, वो तो सच है। तो आप कौन
1: जी।
0: से फिल्म सुनना है आज?
1: सर जी कल हो ना हो मूवी हो तो
0: कल हो ना
1: जी सर।
0: है तो हाँ, कौन से सुनना है? कल हो ना हो से
1: सर जी इसमें है वो माही बे
0: माही वे।
1: जी सर।
0: ओके ठीक है, सुना देगा।
1: जी सर दोस्तों को याद कर लें सर।
0: हाँ याद कर लो, याद कर लो।
1: सर जी हमारे मित्र हैं पूरन वर्मा जी राजस्थान से, राकेश जी शिमला से, बदरुआ
0: ओके।
1: से पुरुषोत्तम भैया, और हमारे अमल जी,
0: ओके ठीक
1: बिमल जी, और
0: है।
1: हमारे अविनाश जी, और भगवान सिंह परमार जी,
0: ओके
1: और हमारे रमेश प्रजापति जी, और स्पेशली सर आप
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके शिवा, तब
1: जी।
0: तो
1: थैंक यू
0: आपने
1: सर।
0: ओके, थैंक यू थैंक यू। वेल लिसनर्स, कहने तो होनी वो आप लोगों के उदित नारायण सदन सरगम और सोनू निगम और शंकर महादेवन लगा वास्ते फिल्म से कल हो ना हो।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रमती गुरस्ती
0: ओके, रमेश प्रजापति ना।
1: जी।
0: ओके, आज कौन से गाना सुनना है रमेश जी?
1: अप्रैल फूल। हाँ
0: अप्रैल फूल। क्यों अप्रैल फूल याद आ गया आपको?
1: जी, आज मेरे मित्र ने मुझको अप्रैल फूल बना दिया, इसलिए।
0: ओके अच्छा, अप्रैल फूल
1: हाँ,
0: ना।
1: जो
0: कौन से गाना सुना
1: प्यार
0: है?
1: करते हैं करते रहेंगे। हाँ
0: प्यार करता है करते रहेंगे, ये गाना तो नहीं है अप्रैल फूल में। तुझे प्यार करता है। ओके हाँ, तुझे प्यार करता है।
1: हाँ वही
0: हाँ
1: तो।
0: वहाँ
1: हाँ
0: है, ये तो है। तो मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का हुआ था ना।
1: जी, आज उनके गाना चल रहा है ना, सुमन कल्याणपुर के।
0: ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा
1: डीडीटी
0: रमेश जी, आप कौन से माध्यम से सुनता है ये प्रोग्राम?
1: के
0: ओके डीटीएच ना, आप लोग सब डीटीएच में है ना।
1: माध्यम सुनता
0: अच्छा से
1: हूँ। जी,
0: मिलता है
1: डीटीएच में
0: प्रोग्राम
1: क्या साफ सुथरा प्रोग्राम आता है डीटीएच से। हाँ
0: डीटीएच पे ना। ओके कुछ मतलब कभी डिस्टरबेंस होता है?
1: हाँ कभी कभी हो जाता है। हाँ
0: ओके ओके, वो तो वेव वेव का बारे में होता है ना वही।
1: हाँ हाँ वो मौसम वगैरह कैसे ही होता है, गड़बड़ पानी वगैरह गिरता है या कुछ, थोड़ा बहुत तो ही
0: हाँ
1: होता है मतलब।
0: अच्छा, ठीक है ठीक है।
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन कर दिया। और
1: जी,
0: आप किसको डेडिकेट करना है ये गाना? किसी मित्र को?
1: सबसे पहले तो आपको,
0: ओके थैंक यू।
1: और फिर भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज देव जी, कृष्ण सिंह राजपूत है, मंगल चंदेल, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और रमेश पात्र है, भाई को मुंडा है, अमर सिंह साहू है, पूनम जी है कानपुर से, गोल्डी जी है, अमन जी है, बिमल जी है, राकेश जी है शिमला से, अविनाश सेली जी, आशुतोष जी है, सविता जी है, पूर्णिमा जी है, और शिव लोहार है विदिशा से। जी
0: ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके रमेश जी, ओके
1: जी धन्यवाद आपको हमारा फोन रिसीव करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: तो लिसनर्स का इतना होने वो अपन लोग के मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी कल्याणपुर लगा वास्ते फिल्म से अप्रैल फुल।

0: Hello.
1: Good evening, sir.
0: Good evening, Tanushri, na?
1: Yes, sir.
0: Tanushri, okay, okay. कैसा है Tanushri ji?
1: सर बहुत अच्छी है.
0: Okay. मैं भी बहुत अच्छा हूँ.
1: जी और सर फिल्म का नाम है जिस्मा.
0: फिल्म का नाम क्या बताया?
1: जिस्मा.
0: जिस्मा. अच्छा से थोड़ा मैं आपका प्रोनाउंसिएशन से जिस्म
1: जिस्म
0: जिस्म जिस्म ना
1: सर जिस्म
0: इस पर
1: दूसरा बताओ क्या. जुर्म.
0: जुर्म
1: जी.
0: जे यू आर एम ना.
1: जी.
0: ओके जुर्म. जुर्म से कौन से गाना सुनना है आपको?
1: सर मैं गा कर बताती हूँ.
0: ओके
1: जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई
0: मुश्किल हो जाए ये
1: गाना साथ मेरा. और मुझे पता है आकाशवाणी को वो मेरा साथ जरूर देगा.
0: ओके ठीक है तनुश्री जी थैंक यू. और किसको डेडिकेट करना है ये गाना?
1: जी मेरा एक बहुत प्यारा सर दोस्त है जिससे मेरे अभी बात हो रही है.
0: ओके ओके.
1: और मेरा दूसरा दोस्त बहुत ही प्यारा है उनका कॉल अभी तक नहीं लगा तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कॉल लगाए. अमोल भट्टाचार्य है उनका नाम.
0: ओके ठीक है बहुत बहुत.
1: और सर आप सबको पूछ रहे तो मैं भी बताती हूँ मैं भी डीटीएच के माध्यम से ही आपका कार्यक्रम सुनती हूँ.
0: डीटीएच का माध्यम से ना?
1: जी सर.
0: ओके हाँ जी डीटीएच में तो थोड़ा अच्छा से मिलता है.
1: जी सर और साफ आवाज आती है तो बहुत अच्छा सुनने को लगता है.
0: ओके थैंक यू ठीक है तनुश्री जी. गाना तो लंबा है सब तो बजा नहीं सकेगा.
1: सर मैं तो जी और जोती थी कि सर जो भी मैं गाना बताऊंगा तो वो आप ही बजा दीजिए क्योंकि हमारे मुझे गाना सुनने से ज्यादा हमारे श्रोताओं की बहुत प्यारी बातें सुनने अच्छी लगती है तो मेरे गाना आधा ही बजा दीजिए.
0: ओके बहुत बहुत शुक्रिया. ओके
1: ओके बाय
0: बाय बाय. वेल लिसनर्स कहने क्या होनी वो आप लोगों के कुमार शानू और सदना सरगम लगा वास्ते फिल्म से जूम.

0: हेलो
1: हेलो जैकब सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: राकेश, ओके राकेश जी, बताइए कैसा है आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। इस वक्त मैं आपका प्रोग्राम डीटीएच के माध्यम से सुन रहा हूँ।
0: हाँ, मैं भी वही पूछने वाला था। ओके, आपने बता ही दिया तो बहुत अच्छा है।
1: जी जी, क्योंकि मैं डीटीएच के माध्यम से सुनता हूँ और डीटीएच मेरे दो स्पीकर लगे है और मैंने दोनों स्पीकर कनेक्ट करके और मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल दमक के साथ।
0: ओके, स्पीकर में कनेक्ट करके ना?
1: हाँ, स्पीकर में कनेक्ट करके डीटीएच, जो पुराने डीटीएच का जो सेट बॉक्स होता है उसमें स्पीकर का अलग से कनेक्शन होता है। बाकी तो कनेक्शन था ना टीवी वाले, स्पीकर वाला कनेक्शन, उसमें मैंने और लगाया गाड़ी वाले स्पीकर।
0: ओके ओके। मौसम कैसा है? मौसम कैसा है उधर में?
1: जी उधर बारिश हो रही थी और अभी जो है मौसम साफ है।
0: साफ है ना, ठीक है। राकेश जी, आज कौन से गाना सुनना है आपको, कौन से फिल्म का?
1: फिल्म का नाम है दुश्मन।
0: दुश्मन
1: जी।
0: अच्छा, दुश्मन 1998 का ना?
1: हाँ जी, 1998 का।
0: कौन से गाना सुनना है दुश्मन से?
1: उसमें गाना है प्यार को हो जाने दो।
0: ओके,
1: लता मंगेशकर और
0: कुमार सानू
1: की आवाज।
0: ठीक है, बजा देगा।
1: जी तो मैं दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: ओके, याद कर लिए।
1: सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूरण वर्मा और राजस्थान जयपुर से, अमल भस्मचार्य हैं, अंजलि भस्मचार्य, विमल भस्मचार्य हैं और शिवा लोहट हैं, अविनाश तेली हैं, भगवान सिंह परमार हैं और पूरण वर्मा है, रमेश प्रजापति हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता और आशुतोष देवनाथ है और संगीता देवनाथ है, सभी के साथ ये गाना सुनना चाहता हूँ और आपको भी ये गाना देख लीजिएगा।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: ओके, धन्यवाद।
0: तो लिसनर्स के लिए अगर उन्हें वो लता मंगेशकर और कुमार शानू लगा वास्ते फिल्म से दुश्मन।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार रमेश पटो ना?
1: नहीं सर, मुझे धेमाजी जिला में सही सुबह बिमल बसुमतारी सर। हाँ
0: ओ बिमल बसुमतारी ना? अलग आवाज तो एक ही होनी थी कारण।
1: सर,
0: अच्छा बिमल, अच्छा अपनी गान की प्रोग्राम तो फोन पर होने ना, डीटीएच पर होने ना, रेडियो पर?
1: मैं मोबाइल पे हूँ।
0: मोबाइल थे ना,
1: हाँ
0: न्यूज ऑन एयर ऐप ना।
1: हाँ हाँ सर, हाँ जी
0: ओके ओके ठीक है ठीक है। तो आज कौन गाना होनी वो बिमल?
1: सर, अभी बिच्छू फिल्म का किसे है
0: बिच्छू ऐसे तो ऐसे तो
1: बिच्छू पर बनाते समझते सर।
0: BIC बिच्छू ऐसे तो की गाना, जीवन में जाने जाना, दिल टोटे टोटे हो गया, एक वारी तक ले प्यार हो ना जाए, प्यार तू दिल तू तेरे होठों की हंसी। कौन कौन तो होनी बोले मन से?
1: तो ये बनना जाने जाना तो मेरा भी सर।
0: ठीक है सर, इतु गाना तो लप तो माने पॉपुलर है इतु गाना। ओए
1: हाँ
0: ठीक है सर, बिमोल
1: सर,
0: को
1: मैं डेडिकेट करूंगा।
0: ओके डेडिकेट कर भी।
1: अमर से अमर
0: ओके
1: बसुमतारी से प्रथम बसुमतारी से सुनीता बसुमतारी
0: ओके
1: सुनीता बसुमतारी रमेश पात्र प्रजापति अंशुला बसुमतारी अविनाश जितेंद्र
0: ठीक है सर।
1: दास रविंद्र रंती गोल्डी अविनाश शिकारी रंती भगवान सिंह राकेश अरे थकते शिवा लोहार अरे अमर विमान तो सर विमान तो ऐसे सब खाने मुर मुर नाम से जुने जुने दिल कट करे सबको मैं जो लोगों ते अपना को दिसे सर।
0: ओके ठीक है सर। बिमल तो थैंक यू सो मच अपनी कॉल करी डीजे टिकॉल ने दे।
1: धन्यवाद सर।
0: ओके धन्यवाद धन्यवाद। वेल लिसनर्स खान इतना शुनिब अपना हरि आनान और जसपिंदर नारुलाल आवाज़ फिल्म आसे बिच्छू।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग।
1: अमल
0: बेटा
1: बतमतारी बोल रहा हूँ, सोनीपुर असम रंगापड़ा से। सच
0: ठीक है। मैंने सोचा भाईकोन मुंडा। ओके, एनीवे अमल बसुमतारी।
1: सच
0: ठीक है से कैसा हो आप?
1: आप आज आज तो अच्छी हो, लेकिन असम में आज बहुत गर्मी था, बहुत धूप दिया था,
0: ओके ओके ठीक है से की गाना होनी हुआ
1: तो
0: आपने?
1: आज टाइम भी बहुत सारा पार हो गया, लेकिन आप आए तो मैं प्रोग्राम में शामिल होके नहीं रह पा सकता सर। अब
0: ओके,
1: तो सबसे बेस्ट अर्जी रहता है असम ट्रक बैंक की। थैंक
0: वेल थैंक यू सो मच। आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो
1: यू थैंक यू। अदर
0: आज कौन से फिल्म का
1: आरजे
0: गाना?
1: अदर आरजे से भी आप बहुत अच्छी अर्जी से, इसलिए आपको बहुत से तारीफ करते हो।
0: ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: तो आज ज्यादा समय देर ना करते हुए ये फिल्म का नाम रहेगा गुप।
0: गुप
1: हाँ
0: गुप ना
1: हाँ हाँ
0: जी। ओ गुप, अरे गुप तो नहीं है हम लोग पास।
1: है लेकिन वही बजते रहता है ना।
0: हाँ गुप। अच्छा थोड़ा स्पेलिंग बता दीजिए एक बार।
1: जी यू से शुरू होता है।
0: अच्छा जी यू गुप्त,
1: हाँ
0: ऐसा बोलो ना। गुप नहीं तो गुप्त होता है
1: हाँ
0: उसका, गुप्त
1: ठीक है
0: होता
1: ठीक है
0: है।
1: ठीक है।
0: GUPT। ओके गुप्त। आप
1: तो
0: प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हमको
1: हाँ।
0: पागल बना दिए।
1: अच्छा, पता चल गया। तो
0: ठीक है,
1: सर
0: कौन से गाना सुनेंगे गुप फिल्म से?
1: यहाँ पे एक गाना था ना उदित नारायण जी की आवाज में।
0: माने गाना का नाम बोलो ना। मेरे सामने मुझको
1: नहीं नहीं ये नहीं है।
0: तो दुनिया हसीनों का
1: हाँ हाँ
0: मेला।
1: हाँ ये दुनिया हसीनों का मेला। हाँ हाँ
0: ओके ठीक है सुना देगा।
1: तो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा दोस्तों को,
0: ठीक है डेडिकेट कर दीजिए।
1: और मेरे दोस्त है भाईकोन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्र, जोगेंद्र
0: ओके
1: रंगपी,
0: ओके
1: और हमारे महाराष्ट्र से है तानुश्री,
0: ओके
1: और अंजलि है अंजलि बसुमतारी, अंजलि
0: ओके
1: गोगोई, और सुनीता बसुमतारी, और रुखोबेला मेठा है, सुबह की जमीर है, और हमारे भगवान सिंह परमार है,
0: ठीक है।
1: और राकेश है, पूरन वर्मा है, और शिवा लोहार जी है, और रमेश प्रजापति है। उन लोगों को सुनना चाहता हूँ। और मेरा एक दोस्त से संपर्क होने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। हमारा जो कोहिमा का ही है वो भी, नागालैंड का,
0: ओके
1: जिसका नाम है चुबा की जमीर।
0: ओके चुबा की जमीर।
1: हाँ उनसे मैं उनको कांटेक्ट नंबर देना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने के लिए, लेकिन अब तक बात नहीं कर पाई, इसलिए मैं उनको नंबर देना चाहता हूँ। और मेरे नंबर से कोई भी लिसनर जुड़ सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक
0: ठीक है
1: है मेरा नंबर बताता हूँ,
0: ओके
1: 7 8
0: ओके
1: 5 3 और 5 3 9 5।
0: ओके ठीक है
1: नंबर को फिर से दोहराता हूँ, 9 6 7 8 5 3 5 3
0: ओके
1: 9 5।
0: ओके ठीक है।
1: जी
0: समय समय भी जा रहा है, अभी तो खत्म
1: जी जी
0: होने
1: जी
0: टाइम हो गया, इसलिए ये गाना ही लास्ट होगा आपका कॉल ही, क्योंकि
1: जी जी जी जी
0: सेवन
1: लाठी
0: टेन से
1: कूलर हो चुका हूँ।
0: तो लास्ट कॉल
1: हाँ
0: होशे तो ना।
1: हाय
0: तो
1: हाय हाय
0: आसामिस कथा बोला पाटिले भाल अकमानू
1: হয় হয় হয় মানে আমাৰ লিসনার্স যে লোক পুরা ইন্ডিয়া সে দূর গায়ে, এসলিয়ে
0: হ্যাঁ
1: মেরি
0: ইন্ডিয়া
1: বাত
0: সে
1: বলনে
0: দূর
1: সে
0: গায়ে।
1: সবকো পতা চল জায়েগা, এসলিয়ে হামারে নাগামিস কো থোড়া ছোড় কে আজ হিন্দি মে বাত কর রহা হুঁ।
0: হ্যাঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ। ওকে এনিওয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে
1: ওকে ওকে স্যার ওয়েলকাম।
0: ওকে ওয়েল লিসনার্স, কারণ প্রোগ্রাম শেষ করবলে টাইম হয়েছে আর প্রোগ্রাম শেষ তো শুনব আপনাদেরকে, দ্যাট ইজ গুপ্ত ফিল্ম পৰা আছে উদিত নারায়ণ আর সুনীতা রাও লগা ওয়াস্তে। আর এই গীত লগতে প্রোগ্রাম তো শেষ করিয়া হব, কিন্তু সময় 7:10 আর 20 মিনিট হওয়ালে আপনি গান শুনিয়া হব নাগামিস আর ইংরেজিতে রিজনাল খবর। তারপরে আছে 7:30 পৰা একটা রেডিও ড্রামা আছে, এর পিছতে আকো ওয়েস্টার্ন মিউজিক প্রোগ্রাম আছে আর জে চয়েস, অ্যান্ড এট 9:30 টুডে দেয়ার ইজ নো হিন্দি ফিল্ম সংস, দেয়ার উইল বি এ নর্থ ইস্ট কলেজ প্রোগ্রাম হুইচ উইল বি রিলেট ফ্রম শিলং। সো আপনি গান সবই শুনে থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়র কলস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টিউনিং, থ্যাংক ইউ। তো লাস্ট গান শুনব এটা কই দিয়ে নিচিনা উদিত নারায়ণ আর সুনীতা রাও লাগা ওয়াস্তে।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: FM 103 MHz।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं

0: हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Yes, listeners, you're listening to Akash Vanya from Track Apart 103 MHz. We are presenting to you Western Music RJ's Choice. The next track that I have for you is Nickelback from the album Here and Now, the track called Lullaby. And right after that, I have the track called Written in the Stars by Westlife. So you guys lay back and enjoy the music.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और

0: को साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवम्बर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडिव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: व्यवसाय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ

0: यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
1: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
5: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया.
6: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers in North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor. The Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: ये देश की सुरक्षा का सवाल है.
5: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
7: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
8: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
7: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centered diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashwani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
9: India jo kiya hamare liye vaccine.
10: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. Yes, I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
9: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
7: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
5: Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural